कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षः भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारेन त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमातृ पिशा